केवेनष्टेयात न एङता सोवाने आ याय आ याय हा ए मंग मंग कतरित अम नामे पोषे ननवा ओया मंग मंग कतरित अम नामे पोषे ननवा ओया शेक

जाओ जाओ कर साके अरे तुम्हारा मखन मुस्लिम तेवाते यान है कमो ओ बिन मार्क वन लव ये पे हर या हर

वन मचनो यापसाके अय पमाना मखना मोर्ष्यांग वर्तवाते यान हकमो ओवेन मराक्षवन लव येपे हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय हराय